0: पेड़ पौधों पे मैं देखूंगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था।
1: एक्चुअली व्हेन यू गो टू दैट विंडमिल फार्म ऊपर, तो वहां से देखो कितने प्यारे रंग दिखते हैं। वैसे भी मतलब यू नो यू गो टू समर हिल उस तरफ दिखते हैं, यू गो टू मेसी यूनिवर्सिटी उस तरफ बहुत दिखते हैं, ब्रिज की तरफ जाओ वहां बहुत दिखते हैं, न्यू ब्रिज की तरफ। सो इतने ब्यूटीफुल कलर्स, यू राइट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पेड़ लाल हो सकते।
0: हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने इसे कभी सोचा नहीं था कि मेरे को पेड़ पे पीच कलर दिखेगा
1: बिना फूल के। मतलब पेड़ पे कलर इज लाइक फॉर अस इट्स लाइक ग्रीन ब्राउन एंड कलर ऑफ द फ्लावर।
0: पत्तों की बात कर रहा हूँ।
1: हाँ
0: मैंने इसे कभी सोचा नहीं था। एंड देयर इज दिस वो चेरी ब्लॉसम का पेड़।
1: हाँ पिंक।
0: हाँ तो नॉट ओनली चेरी ब्लॉसम का कलर अलग है, ठीक है, मतलब बहुत अलग है, बट उसके पत्तों का भी कलर अलग है।
1: या दैट्स ट्रू,
0: मतलब उसके पत्तों पे भी कलर है, बहुत सारे
1: पत्तों पे ग्रीन कलर है, बट दैट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्री।
0: हाँ और अभी बिकॉज वो भी झड़ रहे हैं, उनका भी कलर येलो मरून ऐसे हुआ जा रहा
1: है। नहीं वो तो है, बहुत ब्यूटीफुल है। साउथ आइलैंड में ना एक जगह है,
0: साउथ आइलैंड में बहुत जगह है,
1: मतलब एक जगह है जहाँ पे इतने ब्यूटीफुल कलर्स आते हैं। आई वाज देयर लाइक फ्यू इयर्स अगो, आई वाज देयर ड्यूरिंग दिस टाइम अप्रैल मई में मैं वहां पे थी, और मुझे मतलब आई टुक सम फोटोज एंड आई फेल इन लव विद दोज फोटोज बिकॉज ऑफ द कलर्स। So if somebody asks me what is your favorite season in New Zealand, I always say autumn. I know मतलब summer भी है, but autumn is like because of the colors. I just love autumn.
0: For me, autumn has been like very short always.
1: Okay.
0: ठीक है, up until
1: short ही होता ना।
0: हाँ मतलब short, मतलब इतना short के मतलब मेरे को पता भी नहीं था कि autumn exactly होता क्या है, ठीक है, क्योंकि Being in Mumbai, मेरे को इतना ज्यादा कुछ दिखा नहीं था या फिर मैंने ज्यादा नोटिस नहीं किया था, बट यहाँ पे इट्स जस्ट डिफरेंट। ओके एंड पामी में देयर इज अ प्ले, देयर इज अ स्ट्रीट।
1: कहाँ पे?
0: पामी में देयर इज अ स्ट्रीट, एलमीरा स्ट्रीट।
1: ओके
0: वो मेरा फेवरेट स्ट्रीट है।
1: अच्छा
0: किसी ने मेरे को दिखाया था कि ये एक स्ट्रीट है, मतलब मैं पैकेज से जा रहा था, फ्लैटमेट के साथ जा रहा था, तो उसने मेरे को बोला था मैंने तेरे को एक जगह दिखाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, दिखा मेरे को। तो ऑन द वे टू पैकेज से उसने वो एलमीरा स्ट्रीट से लिया।
1: अच्छा
0: तो उसने मेरे को बोला कि ये वाला स्ट्रीट ना मेरा एकदम फेवरेट स्ट्रीट है।
1: अच्छा
0: मैंने उसको पूछा कि क्यों, तो उसने बोला कि तू अब देखेगा तब तेरे को खुद पता चलेगा। सो दैट्स वन स्ट्रीट जहाँ पे दोनों साइड पे सेम पौधे, सेम पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है, और वो दोनों साइड से ऐसे एक टनल बनाते हैं।
1: अच्छा
0: ओके ना द थिंग इज ऐसा तो बहुत सारी जगह,
1: बहुत सारे जगह
0: पे
1: ऐसा, तो इंडिया में भी काफी जगह पे हमने देखा।
0: हाँ लेकिन ये वाले स्ट्रीट पे ना पता नहीं क्यों इट फील्स सो सिमेट्रिक। दोनों साइड पे पौधे ऐसा लगता है कि इट इज सिमेट्रिक एंड नॉट जस्ट दैट, इट कुड बी द ट्रीज, इट कुड बी समथिंग एल्स और वॉट एवर। हमेशा ऐसा लगता है कि जो पत्तियां है ना दे आर ग्लोइंग
1: ग्लोइंग।
0: हाँ ऐसा नहीं लगता है कि सनलाइट इज पासिंग थ्रू द लीव्स, ऐसा नहीं लगता।
1: Wow.
0: ऐसा लगता है कि
1: वो,
0: it becomes a canopy.
1: Yeah.
0: और मेरे को नहीं पता कि वो स्ट्रीट में क्या स्पेशल है या फिर वो पेड़ों में क्या स्पेशल है, but it looks very nice.
1: जब मैं पहली बार न्यूजीलैंड आई थी ना तो मैंने क्राइस्टचर्च में लैंड किया था एंड देन आई फ्लू टू वेलिंगटन एंड देन आई केम टू पामी ऑफ कोर्स। तो मैं जब पामी आई और बाकी जगह पे नहीं सोच रही थी यार ये मतलब कोई जगह कोई पेड़ के पत्ते इतने साफ कैसे हो सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता होता कि ये लोग रोज सुबह पानी डालते होंगे, मतलब ऐसा ना पानी छिड़कते होंगे।

0: करते होंगे, बट आई सॉ देयर इज नथिंग लाइक दैट. इट इज द एनवायरनमेंट, बिकॉज इट इज सो क्लियर, इट इज सो क्लीन, इट इज सो ब्यूटिफुल. सो वो जो ग्रीन एंड क्लीन का जो है ना न्यूजीलैंड का, इट्स क्वाइट एप्ट.
1: जब मैं आया था सो दैट वॉज द 17th ऑफ फरवरी.
0: वाह, डेट भी याद है सर को.
1: हाँ, डेट भी याद है. नहीं, एक्चुअली सॉरी, 15th ऑफ फरवरी. सॉरी, 15th ऑफ फरवरी वॉज द डेट, एंड 17th ऑफ फरवरी वॉज द फर्स्ट डे जब मैं यूनिवर्सिटी में एंट्री किया था. मैं मेन रोड से एंट्री किया था, जिधर वो लेफ्ट साइड पे जब मैं पहुंचा था तब जस्ट लाइक यू मैं पहले क्राइस्ट चर्च आया. ठीक है, क्राइस्ट चर्च से कलेक्टिंग फ्लाइट था मेरा पामी का.
0: अच्छा, तेरा सीधा पामी.
1: हाँ, तो मैं क्राइस्ट चर्च पे उतरा और जैसा कस्टम्स क्लियर हुआ तो ग्राउंड फ्लोर पे आया मैं. ठीक है, फिर मैंने बोला कि कनेक्टिंग फ्लाइट किधर है, तो आई हैड टू गो अपस्टेयर्स. मैं ऊपर गया और मैंने बोला कि मैं अभी कहीं नहीं जाना चाहता. मेरे को बहुत भूख लगी थी और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं नहाऊं. मेरे को लग रहा था कि मैं अभी मैं फ्रेश होना चाहता हूँ, अभी मेरे को कुछ खाना है और मेरे को सोना भी है. बट मैंने बोला कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं ना वॉशरूम देख रहा हूँ, ना कुछ भी देख रहा हूँ, ना मैं कुछ खाना देख रहा हूँ. मैं पहले जाके अपने गेट पे जाके बैठता हूँ. सो इट वॉज अपस्टेयर्स एक लेवल पे, और वो जहाँ पे मेरा गेट था वो है मतलब टर्मिनल में एक गेट है जहाँ पर एक ऐसी फ्लोर टू सीलिंग ऐसा ग्लास है. Okay. और वहां से आपको एयरप्लेन दिखता है.
0: I know.
1: ठीक है, रनवे दिखता
0: है. Yeah, you can see that.
1: हाँ, but मतलब ऐसा ना वाइड नहीं था, इतना एक्सपांस नहीं था, वो पतला सा ही था. और तब हो रही थी बारिश, ओवरकास्ट था, बारिश थी. और तभी मेरे को पहली बार लगा कि मैं ऐसे जगह में आया हूँ जहाँ पे वेदर हमेशा ऐसा ही रहता है, हमेशा ओवरकास्ट रहता है, हमेशा बारिश होती रहती है, हमेशा ग्लूमी उमी सा रहता है.
0: ओह माय गॉड, दैट इज डिप्रेसिंग.
1: हाँ, मैंने बोला कि यार मैं अभी मतलब 8 घंटे पहले, 8-10 घंटे पहले मैं चेंगी भी था. ठीक है, जो मजे किए मैंने एयरपोर्ट पे, बटरफ्लाई देखे, पॉड्स देखे, टर्मिनल देखे, जूल देखा, खाना खाया, घूमा मस्त. और सनी, एवरीथिंग वाज सनी. फिर मैंने एयरपोर्ट पे ये नज़ारा देखा वेदर पे. मैंने बोला कि ओके, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो जो सनलाइट ग्रीन और वो सब कुछ है ना, वो इधर कुछ दिखने वाला ही नहीं. इधर मेरे को सब कुछ ग्रे दिख रहा है, अभी मेरे को सब कुछ वाइट, ग्रे, ब्लैक यही दिख रहा है. कोई अगर मेरे को तभी कहता कि तेरे को ये जो सीन दिख रहा है ना, दिस इज जस्ट वन पैलेट, दिस इज वन, जस्ट वन
0: पैलेट, वन पैलेट, दैट्स करेक्ट.
1: और तेरे को इतने पैलेट मिलेंगे कि तू खुद डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा. मैं शायद नहीं मानता उसको, बट आई एम रियली हैप्पी कि
0: यू वर रॉन्ग.
1: हाँ, कि मेरे को ऐसे देखने को मिलता है. जब भी रेंगेटी की स्ट्रीट से अपन फील्डिंग की तरफ जाते ना, तो जब शाम के टाइम में सनसेट दिखता
0: है,
1: तभी वो रास्ता देखने का
0: बहुत अच्छा है. वहाँ पे कभी कभी ड्राइव करने में इशू होता है क्योंकि सन एकदम सामने आ जाता है.
1: बट देन यू हैव टू ऑब्जर्व द कलर्स.
0: आई नो, ब्यूटीफुल. और एक और बात बतानी है मुझे तुझे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट एक गाना चलाते पहले.
1: अच्छा. आज ओके, ठीक है, मैं शुभ का गाना बजाता हूँ.
0: किसका?
1: शुभ.
0: शुभ.
1: शुभ.
0: हाँ.
1: आर्टिस्ट है.
0: आर्टिस्ट है.
1: पंजाबी गाने गाता है.
0: ओके, बजाइए.
1: ठीक है, उसका गाना बजाता हूँ. आई थिंक फेल फॉर यू. ठीक है, चलो सुनते हैं.
0: फेल फॉर यू.
1: फेल फॉर यू.

0: ये तो इंग्लिश के आर्टिस्ट लग रहे हैं।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, ये कुछ पंजाबी गानों का ये इट्स अ थिंग कि
0: एक लाइन इंग्लिश की गुस्सा दो,
1: वो नहीं, वो तो होता ही है, बट गाने का टाइटल इज इंग्लिश।
0: अच्छा, बट गाना पूरा पंजाबी,
1: गाना पूरा पंजाबी है।
0: ठीक,
1: जैसे करण औजला का गाना, गाने का नाम है, गाने का टाइटल है बॉयफ्रेंड, बट गाना शुरू होता है अबाउट अ गर्ल बीइंग सैट डाउन बाय हर पेरेंट्स और वो उसको लड़कों की फोटोज दिखा रहे हैं।
0: अच्छा।
1: कि ये पसंद आया क्या, वो पसंद आया क्या, वो पसंद आया क्या, एंड द एंटायर सॉन्ग इज दैट गर्ल सिंगिंग टू हर मदर एंड फादर एंड एवरीबॉडी दैट आई हैव आई लाइक समवन। इसीलिए गाने का नाम है बॉयफ्रेंड,
0: बॉयफ्रेंड,
1: ठीक है, इंग्लिश। एंड देन देन शुभ का देयर इज वन सॉन्ग मुझे पसंद है, मुझे काफी पसंद है, गाने का नाम है वन लव, लेकिन उसमें गाने का इंग्लिश का एक वर्ड नहीं है उसमें।
0: अच्छा, एक प्यार है ना उसका।
1: हाँ, मतलब
0: पर कुछ तो होगा ना एक प्यार से रिलेटेड
1: गाना है। हाँ, मुझे पता नहीं, मीनिंग पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं अभी तक।
0: अच्छा,
1: बट इट्स सो दैट्स द ट्रेंड। सो ये गाने का नाम है फेल फॉर यू,
0: फेल फॉर यू, ठीक है।

0: sorry. So that was the song.
1: That was the song.
0: That was the song.
1: Haan, but I understood why it's called Fell for You.
0: Okay. ठीक है मेरे को अब तक गाने का मीनिंग नहीं मालूम बट
1: मतलब
0: बट आई अंडरस्टैंड
1: वो बोलता है ना कि मैं मतलब आई एम काइंड ऑफ द लिरिक्स काइंड ऑफ हिट द सेम सेंटेंस
0: राइट अभी जैसा वो एपी डिलॉन का गाना ठीक है एक्सक्यूजेस
1: एक्सक्यूजेस
0: ठीक है इंग्लिश गाना नहीं है वो ऑलराइट बट गाने का टाइटल एक्सक्यूजेस है सो है ट्रेंड है ये
1: ओके कूल अब मैं तेरे को जो बात बताने वाली थी हाँ तो जब मैं पामी आई थी तो उससे पहले मतलब सबसे पहले व्हेन आई केम टू न्यूजीलैंड इन 2020 आई लैंडेड इन क्राइस्टचर्च सो व्हेन आई वाज लैंडिंग इन क्राइस्टचर्च लिटरली तो मैंने प्लेन से आप देखते हो ना कि कैसा लग रहा है भाई अब नई कंट्री में आया
0: हूं मेरे को विंडो सीट मिला नहीं था आई हैव नो आईडिया
1: अच्छा मेरे पास विंडो सीट था तो मैं देख रही हूँ कि कैसे है नीचे यू नो सब कुछ मुझे लिटरली आई कुड सी अ रिवर एंड